0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: डॉक्टर विश्वास BEMS CMS and ED UP भारत लखनऊ सम्पर्क नम्बर भारतीय नम्बर +91 843 49 3700 नेपाली नम्बर +977 970 14 499 00
1: यो कृष्ण सार FM
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

பர்தைன சசரிவன் பர்தைன பர்தைன चार हजार बुढाले टन्ने हालेछन् खाममा यो पाली बुढाको व्यापार राम्रो छ क्या हो।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ओहो आज डाई हो नहीं मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहटू
1: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
0: ए बात ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत
1: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहां कई जाएत
0: ए ओसिनो कला से उहां जाई मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
1: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा
0: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
1: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
0: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
1: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 और 98-482-80-465

0: जब से तुमको देखा है
1: सिंगापुर होलसेल
2: नेपाल गंज सेतु विकास चोक
3: सिंगापुर होलसेल
2: नेपाल गंज सेतु विकास चोक नामै काफी क्या दामी।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: ओहो, आज डाइहो नै मजा लागत हो। मजासे दवाई करेला कहतु।
2: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन। पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
1: ए बात तो ठीक कहलो। साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त?
2: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो, भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
1: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
1: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाई न। वहाँ अनुभवी चिकित्सा को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई। वोत्रकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना, जीर्ण रोग, काने धूसी, कान खजुईना, कान कम सुनना, कान दम्मा हुईना बिरामी के उपचार ओ परामर्श। वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार फे हुई। वकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगैना ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाए अनुसार उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते BTE, CIC, RIC सेवा वहाँ मिला।
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेला से वजह से सुनो से कही ता?
2: एकदम समय में उपचार करैले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ, फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। सम्पर्क नम्बर 98-84-20-697, 98-85-23-697 ओ 98-014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
3: रंग बहार
4: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
3: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
4: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि।
3: घर रंगाऊ, खुशी बढाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेन्सले।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
0: बस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले, साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98239-80665 और 98482-80465।
2: अब मूड़ और नस संबंधी रोग के खातिर लखनऊ न जाए पड़ी, आपके अपने शहर बहराइच में यहाँ अब विश्व स्तरीय न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध है। माँ पीतम्बरा ब्रेन स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पर यहाँ उपचार के खातिर उपलब्ध हैं लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर, जहाँ पर यहाँ बीमार लोगन के उपचार के खातिर लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिवम ए मदेसिया से सहूलियत दर में यहाँ उपचार सेवा पावा जा सका जात है।
3: हमरे यहाँ मुड़े चोट, मुड़े हड्डी के फ्रैक्चर, दिमाग के नस फटे समस्या, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफलास यानी कि मुड़े में पानी की चमक समस्या, दिमागी बुखार, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसे चेहरा में यहाँ दर्द, रीढ़ के हड्डी में यहाँ ट्यूमर, TB, रीढ़ के हड्डी के फ्रैक्चर के दूरबीन से ऑपरेशन, कमर दर्द, हाथ पैर में यहाँ झनझनाहट, हाथ पाँव में यहाँ सूजन, नस सटका, गटई में यहाँ अकड़न, रीढ़ में यहाँ जनमिन से भावा घाव के उपचार होत है।
2: ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा केयर, न्यूरो क्रिटिकल केयर और 24 घंटा इमरजेंसी के सेवा उपलब्ध है। ऐसन श्याम डायग्नोस्टिक से रोग जांचे गुणस्तरीय सेवा समेत उपलब्ध है।
3: स्थान अस्पताल रोड V2 मल के सामने बहराइच, आज संपर्क किया जाए। संपर्क नंबर +91 911 844-2021 और +91 99192211। ऐसे नेपाली नंबर 9769249329। ऊपर के दिया नंबर में यहाँ व्हाट्सएप से भी मैसेज और फोन कई सका जाता है।
4: बैक टू बैक, बैक टू बैक इन दिस सॉन्ग ऑन स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से
4: दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।
4: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो साथी आप लोग सुना जाता है आप एक प्रिय रेडियो किसी सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज़ से जो चलत है कार्यक्रम चना जोर गरम जो 1 बजे से 3 बजे तक रही जिमा आपका पुरस्कार भी मिली माँ क्वेश्चन है क्वेश्चन के उत्तर दिया जी और आज के दिन माँ आप नात कवाली जो भी अपने मन पसंद के सुने चाह जाते तो मैसेज माँ भेजा जी 98155 96 306 माँ मैसेज भेजा जी और आप का अच्छा अच्छा नात कव्वाली सुने का मिली तो इसे आज के क्वेश्चन भी है हम क्वेश्चन आपका बताइए आपके उत्तर दिया जी उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी कहाँ से दिया जी आप लोग भी जान जाओ जाए कि आप के माना जाना हुआ नंबर 1 टेलर ज्योति टेलर जो सदा लाइन वार्ड नंबर 4 माँ है जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा पीस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार यानी सब मेरे के कपड़ा कुशल कारीगर द्वारा सिया बनाया जाता है वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। तो साथी पहला नंबर में है आप लोग एकदम ध्यान से सुना जी कागबेनी कौन जिला में परत है कागबेनी कौन जिला में परत है एक नंबर में है दो नंबर में है स्वर्ग द्वारी तीर्थ स्थल कहाँ है कहाँ परत है परछा कहाँ परत है। हाँ तो साथी नेपाली में अभी बताए दे हमारे श्रोता लोग नेपाली लोग नहीं जान पाते हैं अवधि भाषा तो उनका भी समझाओ बताओ परा कागबेनी कौन जिला में पर्द छा एक नंबर में है दो नंबर में है स्वर्ग द्वारी तीर्थ स्थल कहाँ पर छा। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ सुना जी प्यारा से कव्वाली कव्वाली के बाद माँ हम आप फिर मिला जी नंबर माँ जुड़े रहा जी

0: जनता केबल पांच दशक देखी।
1: पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz कृष्ण सार जस तेज।

0: रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: माया बाबु टेलर के तो सक्कु सामान हो गिल बा, अब मशीन कहाँ से नन्ना हो?
2: छी दादू फिर ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे हैं बाबू?
2: उहाँ तो अनमोल उषा वो ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री वो मरमत कई जी था। एक रख संग संग मशीन संबंधी सबको पार पुर्जा वो सामान फे पाजी था। अट्रगेल कहाँ हो कुशल कारीगर हुकन से मरमत फे करा जी था।
3: एक एक संगे दस्या देवारी हो छठ त्योहार सम 5 से 30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर घरबाई टोल 2 पीपल चौतरा नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 9841828318 और नंबर बा 9824542478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
4: आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विकास नेपाल तेजस्वी हर्ट सेन्टरमा आफ्नो सेवाहरु दैनिक रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको यहाँहरुमा जानकारी गराउँदछौं।
5: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, सुगर, मधुमेह, मुटु दुख्ने, हृदय छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टा सुनिने, शरीर सुनिने, चक्कर लाग्ने, बेहोश हुने, हार्ट अट्याक, हार्ट ब्लक, मुटुको बाथरोग, मुटुको पेसमेकर हालेको वा हाल्नुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरेको वा गर्नुपर्ने, बाइपास अपरेसन गरेको वा गर्नुपर्ने, मुटुको भल्भ फेरेको वा फेर्नुपर्ने र रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरिरहेको बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
4: उपलब्ध सेवाहरू
5: ईसीजी, इको, टीएमटी, 24 घंटे होल्टर, एबीपीएम, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल र मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच, रगत सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षणका साथै सम्पूर्ण प्रकारका जाँचहरू गरिन्छ।
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म, दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म।
5: सम्पर्क नम्बर 081536667, 9215597532। ठेगाना गणेशमान चोक भेरी अस्पताल जाने बाटो नेपालगञ्ज।

0: सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुली भर जियौ
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
2: बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-532-375।
5: हाँ तो श्रोताई, प्यारा से कवाली सुना गया छोटा सा व्यापारी विज्ञापन। आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसे 415-122 के लाइन में आ जाए, कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान दाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आपे के प्रिय रेडियो किसी सारे प्रिय रेडियो किसी सारे फिल्म 94 मेगाहर्ट्ज से चलत है। तो आज के क्वेश्चन जो आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए, कागबेनी कौन जिला में पड़त है, कौन, हाँ एक नंबर में है, दो नंबर में है, स्वर्ग द्वारी तीर्थ स्थान कहाँ पड़त है। हाँ तो साथी दोनों का बताओ।

0: आजा कोई साथी फोन लाइन में है। नमस्कार।
1: हाँ साहेब, बंजारे गांव गोमती प्रसाद वर्मा।
0: गोमती जी।
1: हाँ जी।
0: और बढ़िया है?
1: बढ़िया ना हो तो फोन काहे करी।
0: बढ़िया तो नहीं है।
1: एक कव्वाली सुनाओ, कुली फिल्म वाला।
0: कौन कव्वाली?
1: कुली कुली वाला, कुली फिल्म।
0: मुबारक हो तू सबका हज का महीना।
1: हाँ हाँ
0: ठीक है, जो क्वेश्चन है उत्तर दिया जाए।
1: हाँ क्वेश्चन वा हम बताए ना पहले, तो मियाँ की है वैसे कहा बताई हम।
0: ठीक है तो नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी गोमती प्रसाद वर्मा रहा है, जो जानकी गांव पालिका तीन बंजारे गांव से मेरे बहुत पुरान सुरता है। कोई साथी है देखी को कहाँ से। नमस्कार। नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्कार।
0: आपके नाम?
2: दलईपुरवा से राम किशन।
0: राम किशन जी।
2: सुनाओ।
0: हाँ बढ़िया है, कार्यक्रम सुना जाते है शुरू से?
2: हाँ सुने तो हन।
0: हाँ उत्तर दिया जाए।
2: पहले वाला तो मुस्तान जिला तरफ है।
0: हाँ
2: और दूसरा है उठान।
0: ठीक है। ठीक बजे वाला कव्वाली जो है आप सुनी हो की काकी का?
2: अरे हम इतने बैठे हैं, कंचेद हैं, रोशन हैं, साबित हैं, कुंवारे हैं,
0: यानी सबका।
2: और पहले आपका।
0: ठीक है नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: हाँ साथी डलाईपुरवा से रहा है राम किशन बड़ही जी, तो इसे नंबर में जुड़ा जाए। सुन है 81415 122 के लाइन में कैसे कार्यक्रम जो आप लोगों के 1 बजे से 3 बजे तक रही कार्यक्रम जी में आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। नमस्कार। नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: आपके नाम?
3: श्रीराम कोरी पुरैना से।
0: श्री राम कोरी। और श्री राम?
3: बढ़िया है जी।
0: बढ़िया रहे चाहिए ना।
3: बढ़िया। अपन सुनाओ।
0: हाँ हम लोग भी ठीक हैं, तो उत्तर दिया जाए।
3: पहला नंबर के हो मुस्तांग जिला।
0: हाँ
3: और दूसरा नंबर हो ट्यूठान।
0: ठीक है नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: हाँ साथी शीशराम कोरी रहा है, जो ये हमरे गिजरा पुरैना से पश्चिम जो खजुरा गांव पालिका से। तो ऐसे साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। सुनाए कैसी 415 122 के लाइन में आवाज आए कैसे कार्यक्रम सब आप लोगन के हुए कार्यक्रम के पर जखें जहरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है। कोई साथी हैं देखिए उनका स्वागत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
4: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। और हो
4: जी गाँव से बोली थे भद्रा सिंह कृपाली।
0: और भद्रा जी
4: बहुत बढ़िया है जी, आपके सुनाओ का हाल खबर है?
0: बस हम लोग भी ठीक हैं।
4: धान वान काटते हो कि नहीं काटे हो?
0: अब धान सब ऊपर वाला काटत है।
4: अच्छा।
0: हाँ
4: सभी का यही हाल है
0: सबके, तो सारे जगमा।
4: हाँ
0: भद्रा जी कार्यक्रम के क्वेश्चन के उत्तर दे।
4: हम तो हाँ पे लगा हुआ है फोन।
0: नहीं सुने हो?
4: नहीं सुने हैं।
0: नेपाली में बताई दी कि अवधि माँ?
4: नेपाली बोलो या हिंदी या इंग्लिश में।
0: कागबेनी कुन जिला में पर्द छा? एक नंबर माँ, दुई नंबर माँ है स्वर्ग द्वारी स्थल स्थल तीर्थ स्थल कुन कहाँ पर छा?
4: मुस्तांग पहले नंबर के मुस्तांग और दूसरा नंबर के त्यूठान।
0: ठीक है नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
0: हाँ साथी हमरे भद्रा जी सी गांव बाके से, तो इससे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए कार्यक्रम के एकदम आप लोगन के नेमी हमरे श्रोता लोग जो हैं कार्यक्रम के वो लोग लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ जीता जाए प्रेज और ज्योति टेलर से ले जाओ। तो साथी इससे आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए। कैसे कोई साथी आ चुके हैं देखी को कहां से हैं उनका स्वागत कैली। नमस्कार।
5: हेलो
0: नमस्कार।
5: नमस्कार,
0: आपके नाम?
5: हम जानकी पाल गुरुआ गांव से बोली थे, होमराज जी।
0: होमराज?
5: हाँ।
0: और होमराज
5: ठीक है भैया? सर दादा
0: बस बढ़िया राय चाहिए।
5: टाइगर दिन पर भेड़ भवा तो का फोन लगा के बचवा ली दादा से।
0: मैं तो त्यौहार मैसी तो बराबर जात है।
5: मैसे जाते?
0: हाँ मैसी तो त्यौहार रोज जब कार्यक्रम चला था मैसी तो आपके यहाँ आवा करते है।
5: अच्छा तो बढ़िया, धन्यवाद।
0: तो होमराज वर्मा जी और बताओ, खेती किसानी तो सब पानी होएगा है नहीं?
5: पानी कहाँ होएगा, निराश ना हो कुछ ना हो।
0: वो तो है ही है, मैंने कहा था मुड़वा पर हाथ दे के रोवे किसनवा, बरसिगा दही सब सरिगावा धनवा।
5: मैं वो बात ना है, सबके नहीं बिगड़ा है,
0: सबके
5: कोई का नहीं बिगड़ा। तेरे खजुरा एरिया यार मोतीपुर एरिया में तो पाचे बैठा नहीं, उनके बढ़िया होएगा।
0: हाँ उनके तो अभी निगरते नहीं है, कोई कोई के गलेथा है।
5: हाँ वही तो उनके लिए फायदा है।
0: और जो उन पहले आषाढ़ के बैठा हुआ रहा तो गवाह।
5: ठीक है दादा।
0: तो होमराज जी जो हम क्वेश्चन रखा उत्तर दिया जाए।
5: हम उत्तर भैया वो सब बताए नहीं भाई, कहा मुस्तांग का सब नहीं उनका जैसे हम कहा जाए, हम खाली आपसे
0: ना है तो कुछ बतावा जाए, नरम गरम नीक बेकार तो कुछ कहा जी। बा
5: नरम गरम
0: कहा थे, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा या मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा या मर के जाओ या
5: वो तो ठीक है।
0: तो जैसे काग बेनी कौन जिला में पड़ा? एक नंबर में, दो नंबर में है, स्वर्ग द्वारी तीर्थ स्थान कहाँ पड़त है?
5: हम इस सब विषय भोले हैं, जिला वाला हम नहीं जाने सर कहाँ पर। अच्छा कह के आपसे नमस्कार, धन्यवाद।
0: लियो ठीक है, नमस्कार
5: नमस्कार।
0: हाँ साथी होमराज वर्मा रहा है जो गुरुआ गांव बाके से। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा ब्रिक, ब्रिक के बाद में सुना जाए फिर प्यारा से कव्वाली, कव्वाली के बाद में हम आप फिर मिला जी नंबर में जुड़े रहा जी।
6: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङको फाउन्डेसन द्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्ड द्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेशलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया। यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा।
7: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
8: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081531366 र 98085449451।

0: Böyle Bonnie'ye Extreme Energy Drink.
1: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
1: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
2: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
1: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
1: सम्पर्क नम्बर 081535717।
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनने वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे बीटीई, सीआईसी, आरआईसी सेवा मिलत है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
5: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
6: रंग बहार
7: बर्जर संगै उपहारे उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर
6: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
7: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाऊ, खुशी बढाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
6: बर्जर पेन्सले।

0: हाँ तो श्रोता ही प्यारा से कवाली सुनागा कुली फिल्म के। मुबारक हो तू सबका हज का महीना नथी, मेरी किस्मत देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, कैसे कार्यक्रम जो आप लोग के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फिल्म 94 मेगाहर्ज जो नेपालगंज बारा बिलासपुर से जो किसी सारे फिल्म से चैनल से चलत है, जो आप लोग वीडियो ऑडियो दोनों सुना देखा जाते कोई साथी है उनका स्वागत कैली पहले। नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार
0: आपके नाम
1: राम से नहीं यादव जानकी रहती पूरे
0: राम से नहीं
1: हाँ।
0: अरे यादव जी कहाँ चले गए रहो हाँ साथी होल्ड मा कह के अरे यादव जी कहाँ गए तो ठीक है हाँ फिर से फोन लगाओ जी आपके फोन भी पूरा नहीं भवा कोई साथी हैं देखी को कहाँ से नमस्कार
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम
2: मुन्ना सलमानी बोल रहे हैं वार्ड नंबर 10 से
0: मुन्ना सलमानी
2: ख्वाजाज मेरी सरकार सुना दो
0: ख्वाजाज मेरी सरकार सुन लो हमरी भी पुकार अच्छा ठीक है हम कवाली सुनेबे क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए जो क्वेश्चन रखा उसको उत्तर दे नहीं अभी नहीं जाने नहीं सुने हो बताई की राय दी
2: कवाली सुना रही है
0: अच्छा ख्वाजा आज मेरी सरकार सुन लो हमरी भी पुकार है
2: हाँ।
0: ठीक है तुम्हारो पुकार सुन ले हैं जरूर सुनिए कहे से सबके रखवाले हैं नहीं हाँ तो लो ठीक है सलाम अलैकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: हाँ साथी मुन्ना सलमानी रहा है जो ये घोसी टोल नेपालगंज जो बाकी से तो साथी इसे नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 के लाइन में आओ जी हमरे नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970 81 415 के लाइन में हमरे देश विदेश के पड़ोस भारत के साथी लोग आओ जी कार्यक्रम जो आप लोगन के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगाहर्ट्ज से चला था कार्यक्रम में यहाँ आपका मैसेज जो पठवे का है तो 98 55 96 306 में मैसेज पठवा जी मैसेज पठाई के तुम का बोलते हैं मैसेज पठवा जाई जो हाँ मैसेज आपके आई छोटकरी माँ नाम पता ठिकाना लिख के पठवा जाई तो इससे 98 55 96 306 माई कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 माँ है जहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जाता है जहाँ सब मेर के लेडीज जेंट्स कपड़ा का कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट सब मेर के कपड़ा कुछ सरकारीगर द्वारा सिया बनाए जाते हैं वहाँ से आपका पुरस्कार दिया जाए तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ते रहा जाए और इससे हमारे हाथ में मैसेज आएगा मैसेज भेजे वाले हैं ये मैसेज भेजिन है खजुरा नहर से जो जानकी गाँव पालिका 4 से दल सिंगार यादव जी लिखिने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम नमस्कार जय माता दी तो आपका भी नमस्कार है अस्सलाम वालेकुम जय माता दी है कहने हमका कोई प्यारा से कव्वाली सुनाए दिया जी हमका दल सिंगार यादव कहके चिन्ह जाना ले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते धन्यवाद है आपका दल सिंगार जी आपके मैसेज ऐसे अवते रही तो हम लोग भी मैसेज का अपने कार्यक्रम में समावेश जरूर करते रहा जी तो इससे अब हम चले थे पहले 2 बजे के टेम चेक के बाद में व्यापारी विज्ञापन के बाद में आप लोग सुना जाए प्यारा से कव्वाली हाँ पुतली भाई के कव्वाली है ना चंदा जी ख्वाजा आज मेरी सरकार सुन लो हमरी भी पुकार हाँ हमरे मुन्ना जी के कव्वाली फरमाइश रखी ने ख्वाजा आज मेरी सरकार सुन लो हमरी भी पुकार तो अब हम चले थे पहले 2 बजे टेम चेक तरफ

0: रेडियो मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है। कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में ही अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
1: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
2: नींद
3: सोचे भन्दा सस्तो मा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्नीचर चाहियो, आउनु होस सोफा हब नेपालगंज।
4: हरेक सामान को खरीद मा 1,000-20,000 सम्म छुट, 10-15 वर्ष सम्म को वारंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि।
3: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ। स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
4: सम्पर्क 9705118470।
3: सोफा हब नेपालगंज,
4: विश्वास मा नम्बर 1,
3: क्वालिटी मा सबै भन्दा बेस्ट।
5: खुशीको खबर,
6: हाम्रै शहर नेपालगञ्जमा वर्षौंदेखि सेवा दिदै आइरहेको नेपालगञ्ज नेशनल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा दैनिक रूपमा विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा ओपिडी सेवा हुनुका साथै विभिन्न सेवाहरू भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
5: हजुर, हाम्रो यहाँ सर्जरी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नसा तथा हड्डी रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, मस्तिष्क तथा मानसिक सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, छाला रोग सम्बन्धी उपचार, छाला रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे तथा अन्य सम्पूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल का साथै प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पतालबाट सुगर र थाइरोइडको उपचारका लागि डाक्टर सुमन बराल आउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ।
6: नोट, यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरूद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार निःशुल्क ओपिडी सेवा हुनुका साथै जाँचहरूमा 20% विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
5: सम्पर्क नम्बर 081-536-465, 98-239-80-665 र 98-482-80-465। नेपालगञ्ज नेशनल अस्पताल, बीपी चोक, नेपालगञ्ज।
7: सबसे बताऊंगा अब ना छुपाऊंगा, रेडियो कृष्णा सार अब हम लगाऊंगा।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: अरे रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हाँ तो श्रोता का क्या चाय चाय पिए लागे श्रोता अब चाय छोड़ के जुदाए अब इधर थोड़ा ऐसे हैगा क्षमा मांगी था आप लोगों से कैसे थोड़ा म्यूजिक ज़्यादा बच चुका है तो ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसे 4-15 से वैस के लाइन में आवाज आए कार्यक्रम जो आप लोगों के प्यारा कार्यक्रम है जी मैं आपका फ़ोन करे करी सुने कैसे 4-15 से वैस के लाइन में जी दुई वैस हो चुका है हमारे स्टूडियो के घड़ी में और हमारे देश विदेश के साथी जो है तो 00970-81-415 से वैस के लाइन में जी मैसेज में पठोए का है तो आप लोग 98-55-96-36 में फ़ोन किया जी कैसे जो भी नात कवाली आप अपने मन पसंद के सुने का है पता ठिकाना छुटकरी में लिख के पठवा जाए तो इससे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने 81-415-121 के लाइन में जी और हाँ ये कोई साथी हैं देखी को कहाँ से उनका पहले स्वागत कर ली नमस्कार नमस्कार
1: हेलो
0: नमस्कार
1: सलाम अलैकुम
0: वालेकुम सलाम आपके नाम
1: छब्बू टेलर गुनाना से
0: छब्बू कहाँ रहे हो छब्बू
1: अरे यार तुम फोन नहीं कर रहे हो
0: ओ छब्बू सीधे रे चोलिया हवाई नजरिया आए
1: और कहाँ है हाल चाल
0: हाँ चंदा सूट सलवार से आओ कोई पैंट कोट से आओ खो तो चली छब्बू थी ना हाँ छब्बू जी
1: हाँ
0: कभी कभी रेडियो से संपर्क कई कई हाय हेलो कह लिया करो कि जानो मियाँ जी है और हमका तो बोली था तो जानो दुनिया जानता भी जिंदा है जिस दिन न बोला उस दिन कही अमेरिका
1: सुनो ना मियाँ साहब
0: हाय
1: एक तो हम कार्यक्रम चलाए हैं यहाँ ढलाई पूर्व में सिलाई कटाई के
0: हाँ हाँ
1: लेडीज की सिलाई कटाई के तालीम चलाए हैं ना
0: हाँ
1: अगर जी का सिलावे हुई है मतलब जैसे ठीक है कोई है तो छब्बू टेलर के घर मतलब संपर्क कैसे करते हैं
0: अच्छा अच्छा हम हो सिखाए दे हम हो सिखाए ना हो तो जांघे पैजामा सीधा
1: एक दिन हम तुमरे में फोन लगा रहे फोन ना लागत रहा यार
0: लागी लागी तो क्वेश्चन के उत्तर दे
1: कौन क्वेश्चन है
0: जो हम रखा है
1: बताओ ना हम नहीं सुने
0: जैसे कागबेनी कौन जिला में पड़त है ना
1: कौन सी
0: कागबेनी कौन जिला में पड़त है ऐसे स्वर्ग द्वारी तीर्थ स्थान कहाँ पड़त है
1: नेपाल में
0: हाय
1: नेपाल में कि इंडिया में
0: नेपाल में नेपाल में
1: मियाँ साहब ऐसा खत्म है क्या अभी के लिए माफी चाहिए
0: ठीक है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: हाँ साथी छब्बू मास्टर रहा है गुनाहना से तो इस ऐसे सुना है कि 81-415 के लाइन में आप लोग जुड़ा जाइए इससे मैसेज आएगा है मैसेज हमारे साथी पठे ने मैसेज भेजे वाले हैं पहुना पान भंडार जो खजुरा बाजार से मैसेज भेजे ने लेकिन सर्वप्रथम संचालक मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार तो नमस्कार है इन्हों कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी कव्वाली सुने वाले इनके घर परिवार में जैसे अपने घर परिवार का विनय राजा बाबू और तमाम साथी लोगन का अपने घर परिवार का सबका सुनाओ चाहिए ऐसे बिंदुश्री ठाकुर जो नीतू हेयर कटिंग सैलून जो खजूरे बाजार से मैसेज भेजी ने इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी कव्वाली साथी हैं शंकर है मुरारी है किशोरी हैं और तमाम साथी लोगन का सुना चाहिए थे तो साथी अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन तरफ के बाद माँ सुना जी प्यारा से कव्वाली अब सुनो श्री
2: स्टी नमस्ते दाई
3: नमस्ते नमस्ते धेरै दिन पछि देख्यौ त भाई
2: विदेश जान आटेको दाई प्रोसेस गर्दै थिए अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको
3: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि
4: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान
5: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस् ग्यारेन्टीको साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस् अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो
6: हाम्रा विशेषताहरू।
5: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
6: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा।
5: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
6: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
5: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
6: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
5: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
6: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा।
5: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआईसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
6: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।

0: Telefonia. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98480213।
3: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
4: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
3: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
4: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
3: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
4: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
3: सम्पर्क नम्बर 081535717।
5: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। यतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे बीटीई, सीआईसी, आरआईसी सेवा मिलत है।
5: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
6: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
7: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: खुशीको खबर।
3: हाम्रै शहर नेपालगञ्जमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आइरहेको नेपालगञ्ज नेशनल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा

जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेबो मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने उनसे प्यार किया, बुरा किया जो हम

जिसमें मर्द को ललकारने की हिम्मत है, पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगर चे फूल का

0: को दिन बोले फरिश्ते कर गई है दुनिया की सैर, या खुदा दुनिया तेरी सुनी है औरत के बगैर। उठ पड़े हिकमत दिखाने के लिए कुदरत के हाथ, सोच ली मौला ने औरत को जन्म देने की बात। इस तरह मालिक ने की कारीगरी की इब्तिदा, चांद से मांगा उजाला नूर सूरज से लिया, रूप सैयारों से मांगा रंग उषा से लिया, पंखड़ी से ली नजाकत और कलियों से अदा। शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया, बिजलियों से तैर मांगा।
1: सुबिसु अपॉर्चुनिटी 1982 उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुबिसु अपॉर्चुनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र ₹1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना ₹221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। सुबिसु। Bye.

0: हाँ तो श्रोता, जो छोटा सा व्यापारी विज्ञापन प्यारा से कवाली सुनागा, तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 0815-1122 के लाइन में आवाज आए। कैसे कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाता है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फिल्म 94 मेगा से। कोई साथी है फोन लाइन में, देखी को कहाँ से। नमस्कार नमस्कार। हाँ साथी नमस्कार नमस्कार करा मगर चले गए।
1: नमस्कार।
0: हाँ आए हैं है, मोतीलाल जी।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, आपके नाम?
1: मोतीलाल यादव बाकी।
0: और हमार लाल
1: सब ठीक है दादा?
0: बढ़िया है।
1: हाँ बढ़िया है।
0: कार्यक्रम सुना तो शुरू से?
1: हाँ सुने हम।
0: आज पछेल गए?
1: अरे व्यस्त व्यस्त जब लगा तो व्यस्त है। आज बहुत आदमी जन फोन करते हैं।
0: हाँ कब्बो कब्बो तो ऐसे हो ही जाते। नदिया के लहरा तो है ये है, कहते हैं नदिया के लहरा आएगा तो लहरा नहीं तो झूरे में ठाल रहा हूँ। तो मोतीलाल जी क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए।
1: एक नंबर के मुस्तांग जिला, दूसरा पे उठान जिला।
0: ठीक है नमस्कार
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी मोतीलाल जी रहा जो हमरे बाकी गांव से, तो साथी इसे सुने कैसी 415-1122 के लाइन में आवाज है। धीरे धीरे कार्यक्रम के समय भी खत्म होने वाला है साथी। अब हम चले तो पहले प्यारा से सुना जाए कव्वाली।

0: जागीर को क्यों देखते हो और मेरे पाँव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते नजर से देखा।
2: क्या बात है,
1: दिल एक मंदिर है तुम उसकी मूरत हो, किसी ने सच कहा तुम कितनी

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पाँव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा तुम्हारा काम झूठा।

0: हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूं।
1: हाँ श्रोता का क्या जाए, एकदम कार्यक्रम के अंत अंत में हम तो साथी अब स्टूडियो के घड़ी में हमरे 2:55 हो गया। अब हमका फोन मैसेज चिट्ठी सब एकदम लेक समय नहीं है, तो साथी से हमरे फोन करे वाले साथी रहा है गोमती प्रसाद वर्मा रहा है जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव से, ऐसे राम किशुन बड़े ही रहें डले पुरवा बाके से, शीश राम कोयरी रहें पुरैना बाके से, ऐसे हमरे भद्रा सिंह सिरपाली रहें सी गांव बाके से, हाँ होमराज वर्मा रहा है जानकी गांव पालिका 5 गुरुआ गांव से, ऐसे राम स्नेही यादव रहें हाँ करियाती पुरवा से, मुन्ना सलमानी रहें गौसिया मस्जिद जो घोसी टोल से, छब्बू मास्टर रहें गुनाना बाके से, हाँ ऐसे हमरे मोतीलाल जी रहें बाकी गांव बाके से। तो साथी आज के विजेता भी हैं हमरे भद्रा सिंह सिरपाली सी गांव बाके से। हाँ भद्रा जी आपका बहुत बहुत बधाई है। तो साथी आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो साथी कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुना का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो ये क्वेश्चन के बात रहा है जैसे कागबेनी कौन जिला में परा, हाँ तो साथी मुस्तांग में परा ऐसे 1 नंबर में रहा है, ऐसे स्वर्ग द्वारी तीर्थ स्थल कहाँ परा, तो साथी प्यूठान में परा, हाँ तो सही उत्तर दे वाले साथी इनका बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं। ये कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपने दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश हर जगह पर बैठ के सुनागा आप लोगों का बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के, उनके पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो दोनों का पठोए वाले हमरे जो सामने बैठे हुए हैं चंदा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्यारा से कव्वाली तेरे दर को छोड़ चले हम अपना दिल तोड़ चले, वास्तव आप लोगों के दर हम छोड़े वाले हैं श्रोता, बहुत शुभ गाना आएगा एकदम जैसे चाहा जाते वैसे होएगा, आप लोगों के दर हम छोड़े वाले हैं ओपन मुँह मोड़े वाले हैं। तो साथी यही कव्वाली के साथ माँ हम परसोता संचालक मियाँ जी हमरे प्रादिक माँ चंदा जी दोनों जने विदा ली थे, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

पहली मुलाकात में ही हम कितने करीब थे, कभी अजनबी बन जाएंगे ये सोचा न था। मोहब्बत में दूरियां भी मजा देती है ये सुना था, मगर इतने फासले हो जाएंगे ये कभी सोचा न था।

0: सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुली वरज
1: बैक टू बैक बैक टू बैक
2: इन दिस सॉन्ग ऑन
1: स्टे ट्यून्ड।
3: बीएससी के बाद मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ ली और फिजियो बन गई।
4: रिलेशनशिप
3: टूटी ज्यादा और पनी कम।
5: तुम्हारे रिलेशनशिप्स मैरिज

0: back to back.
1: In this song on
0: stay tuned.
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
3: सटाबी की कोई खबर? आप ही ने तो कहा था आपके भाई जैसा है, आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। लगता है आप सब उसे भूल गए।

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: Beer Dental.
3: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-532-375।
5: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
6: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
5: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
6: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड, नेपालगंज, बांके। संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9805-40-37।
7: नींद
5: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
8: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत हैं।
5: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
8: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 9848-20-697, 9850-23-697 और 9814-83-697।
9: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
10: Back to back.
11: In this song on
10: Stay tuned.

0: back to back, back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: भाई साहब संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही।
3: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है।
4: वेट फॉर इट।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी